ओम श्री साय साधु मानस परिशोधकाय नमः। ओम श्री साय साधकानुग्रह वटवृक्ष प्रतिष्ठापकाय नमः। ओम श्री साय सकल संशय हराय

की धरती पे आकर एक छोटी सी नगरिया, एक अनजान सी नगरिया में देखिए साई ने क्या क्या किया है।

की धरती पे आकर एक छोटी सी नगरिया, एक अनजान सी नगरिया में देखिए साईं ने क्या क्या किया है।